0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी, प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजी तोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरा न्यूज़ और हमारे प्रोड्यूसर अज़ीज़ोला दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है। मंगोलिया में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति का राजकीय स्वागत। उलानबातर में ताजिकिस्तान मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय आयोग के पहले बैठक आयोजित। ताजिकिस्तान मंगोलिया व्यापार मंच आयोजित। २०२६ के 6 महीनों में ताजिकिस्तान के औद्योगिक क्षेत्र के 1107 नए रोजगार सृजित। और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मलिक रहमान का मंगोलिया के राजकीय यात्रा के दौरान भव्य स्वागत किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति उखानगइन खुरेनसुख ने उनका औपचारिक स्वागत किया। स्वागत समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय गान बजाए गए, गर्द व फनार्द प्रस्तुत किया गया और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों का परिचय कराया गया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मलिक रहमान की मंगोलिया के राजकीय यात्रा के दौरान ताजिकिस्तान मंगोलिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग आयोग के बेहले पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, कृषि, शिक्षा, सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक के अंत में पहले सत्र के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मलिक रहमान की मंगोलिया के राजकीय यात्रा के दौरान ताजिकिस्तान मंगोलिया व्यापार मंच आयोजित किया गया। मंच में दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों ने व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यम, आयात निर्यात और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में कई सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेंगे। वर्ष 2024 के पहले 4 महीनों में ताजिकिस्तान के 190 नए औद्योगिक उद्यम शुरू किए गए, जिनमें 107 नए रोजगार के अवसर पैदा हुआ है। इसकी जानकारी ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमानजोदा ने दे। मंत्रालय के अनुसार सोतो क्षेत्र में 7 उद्यमियों में 445, खातलोंग क्षेत्र में 40 उद्यमियों में 414, पहाड़ी बदखशान स्वायत्त क्षेत्र में 28 उद्यमियों में 48, दुशंबे शहर में 32 उद्यमियों में 114 और गणराज्य के अधीन शहरों व जिलों के 30 उद्यमियों के 90 नए रोजगार सृजित हुए। उन्होंने ने बताया कि देश के औद्योगिक विकास में प्रसंस्करण उद्योग ऊर्जा आपूर्ति गैस भाप वायु शुद्धिकरण और अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षेत्र के वृद्धि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये भी उल्लेख किया गया कि 2025 में औद्योगिक विकास कार्यक्रम के तहत तजिकिस्तान में 400 से उत्पादन इकाइयों शुरू की गई है जिन्होंने रोजगार सृजन औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात के विकास में योगदान दिया। फिर इस निवालो ये समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रही है हमारे रेडियो के साथ।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।

0: Vartman Gardnaon or Mahatvapuran Rajnitik Modon par Nazar
1: Radio Awaz Tajiki Hindiyanu Bahak se 105.5 FM
0: नमस्ते प्यारे सुनने वालों, अभी हमने तय किया कि आपको तजिकिस्तान गणराज्य के पर्यटन के विकास के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। पर्यटन तजिकिस्तान गणराज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इसकी प्रगति के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और रणनीतियों को अपनाया गया है। तजिकिस्तान प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संसाधनों से समृद्ध देश है, जो देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। पर्यटन का विकास न केवल राज्य के आय बढ़ाने में सहायता करता है, बल्कि नए रोजगार सृजित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और जनता के जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तजिकिस्तान गणराज्य मध्य एशिया के केंद्र में स्थित है और इसके कुल क्षेत्रफल का 93% से अधिक भाग पर्वतों से आच्छादित है। यही भौगोलिक विशेषता तजिकिस्तान को पर्वतीय पर्यटन के प्रेमियों के लिए एक आकर्षक देश बनाती है। पामिर और हिसार पर्वत, मलाओं के ऊंची चोटियां, विशाल हिमनद, तीव्र प्रवाह वाली नदियां और सुंदर झीलें दुनिया के विभिन्न देशों से आने वाले हजारों पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती है। देश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक पामिर क्षेत्र है, जिसे अक्सर दुनिया की चाहत कहा जाता है। इसकी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता, छा वातावरण और मनोहारी पर्वतीय दृश्य पर्यावरणीय पर्यटन और पर्वतारोहण के विकास के लिए व्यापक अवसर प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संपदाओं के अतिरिक्त तजिकिस्तान समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का भी धनी है। देश में सैकड़ों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्मारक मौजूद है, जो ताजिक लोगों के हजारों वर्षों के इतिहास को दर्शाते हैं। प्राचीन नगर, किले, मकबरे और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों सांस्कृतिक पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से प्राचीन शेर, पंजीकेन और स्तरावशान। अपने समृद्ध इतिहास के कारण देश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गिने जाते हैं। इसके अलावा पुरातात्विक स्मारक, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र आगंतुकों को ताजिक इतिहास और सभ्यता से परिचित कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद के वर्षों में तजिकिस्तान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकारी रणनीतियों को अपनाना, कानूनों में सुधार करना, निवेश को आकर्षित करना और पर्यटन अवसंरचना का विकास करना इन्हीं उपायों में शामिल है। देश की पर्यटन संभावनाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तजिकिस्तान विभिन्न पर्यटन प्रदर्शनियों और आयोजनों में भाग लेता है। ये प्रयास देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं। पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में तजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के अधीन पर्यटन विकास समिति के कर्मचारी अब्दुल करीम कुर्बानोव कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में तजिकिस्तान में पर्यटन क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार के समर्थन से पर्यटन अवसंरचना में सुधार हुआ है और पर्यटन तथा सेवा कंपनियों की संख्या बढ़ी है। तजिकिस्तान के पास विशाल पर्यटन संभावनाएं हैं और इसके अद्वितीय प्रकृति, ऐतिहासिक धरोहरें तथा लोगों के मेहमान नवाजी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में तजिकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आकर्षक पर्यटन देश के रूप में और अधिक प्रसिद्ध किया जाए।
2: دوشنبه امروز نه تنها مرکز سیاسی و ماموری کشور بلکه یک پلتفرم مهم رشد سیاحی
0: دوشنبه آج نه کیوال دیش کا راجنیتیک اور پرشاسنی کیندر ہے بلکہ پریاتن وکاس کا ایک مہتوپورا مانچ بھی مانا جاتا ہے یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان سرکار کے دور درشی نیتریت اور دوشنبه شہر کے ادھیاش کے نرانتر سمرتھن کے کارن ہماری پریا راجدھانی دوشنبه ایک ادھونی سرکشت اور پریاتکوں کے لیے آکرشک شہر میں پریورتت ہو چکی گی انوکول بھوگولی ستھتی سکھات جلوایو شانتی پورا واتاوران اور تاجک جنتا کے وشیش مہمان نوازی نے دوشنبے کو دیش میں پریٹکوں کے پرویش کا موقع دوار بنا دیا ہے. آج راجدھانی سنسکرتی کے اتہاسک اور منورانجک آکرشکوں کا ایک سمرد کیندر ہے. ان میں روداکی پارک پرمکھ سیر سپاتے اور سانسکرتک کاریہکرموں کے آیوجن کا مکھیہ استھل مانا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی سوتنترتا چوک تاجکستان کی سوتنترتا کے بعد کی اپلبدھیوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک مہتوپورن ایوان آکرشک استھان ہے جو پریٹکوں کو وشیش روپ سے آکرشت کرتا ہے. اسی سندر میں تاجکستان کا راشٹری سنگرہالے بھی وشیش مہتو رکھتا ہے. یہاں آگنتک تاجک لوگوں کی سمردھ اتہاس اور پراچین سبھیتا سے پریچت ہو سکتے ہیں तथा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक की दुर्लभ सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन कर सकते हैं. तजकिस्तान का राष्ट्रीय पुस्तकालय क्षेत्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है जो विशेष रूप से उन आगंतुकों का ध्यान आकर्षित करता है जो सांस्कृतिक इतिहास और ज्ञान में रुचि रखते है. कोखी नवरोज राष्ट्रीय वस्तुकला और ताजी कारीगरों के उत्कृष्ट शिल्प कला का एक अद्वितीय उदाहरण है. इसकी भव्या सजावट और कलात्मक सौंदर्य इसे राजधानी के प्रमुख पर्यटन प्रतीकों में से एक बनाते हैं. इसके अतिरिक्त तजकिस्तान का राष्ट्रीय दहवाज अपनी प्रभावशाली ऊंचाई के कारक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय फोटोग्राफी स्थलों में से एक बन चुका है. हाल के वर्षों में राजधानी में पर्यटन अवसंरचना का विकास तीव्र गति से जारी है. उच्च स्तरीय होटल गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जबकि रेस्तरां और चायखाने न केवल पारंपरिक ताजिक व्यंजन बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन भी उपलब्ध कराते हैं. साथ ही आधुनिक सड़कों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और टैक्सी सेवाओं सहित परिवहन सुविधाओं में सुधार ने पर्यटकों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बना दिया है. जटिल तकनीकों के विकास जैसे ऑनलाइन सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र और डिजिटल गाइड ने भी पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना अधिक आसान और प्रभावी बना दिया है. तजकिस्तान में पर्यटन विकास के प्राथमिक दिशाओं में से एक पर्यावरणीय पर्यटन है. अछूती प्रकृति सुंदरता वनस्पतियों और जीव जंतुओं की विविधता संरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान पर्यटकों को प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं. तजकिस्तान राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरणीय पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है. ये क्षेत्र दुर्लभ प्राकृतिक दृश्यों हिमनदों और जैविक विविधता से समृद्ध है जो प्रकृति प्रेमियों के लिए अतियान आकर्षक है. चिकित्सीय पर्यटन के क्षेत्र में भी तजकिस्तान के पास अच्छी संभावनाएं हैं. देश में अनेक औषधीय झरने और स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत है. हर वर्ष तजकिस्तान के नागरिक तथा विदेशी पर्यटक उपचार और विश्राम के लिए इन केंद्रों का दौरा करते हैं. प्राकृतिक उपचारकारी संसाधन अनुकूल जलवायु और खनिज जल इस प्रकार के पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं. पर्यटन का विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटलों रेस्तरां परिवहन तथा अन्य सेवाओं की भांग में वृद्धि होती है. इसके परिणाम स्वरूप नए रोजगार उत्पन्न होते हैं और लोगों की आय में वृद्धि होती है. इसके अलावा पर्यटन पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास को भी प्रोत्साहित करता है. पर्यटक कढ़ाई मिट्टी के बर्तन आभूषण निर्माण और पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों में रुचि दिखाती है जिससे राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायता मिलती है. उल्लेखनीय उपलब्धियों के बावजूद पर्यटन क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी मौजूद है. दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन अवसंरचना अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है. आधुनिक होटलों की कमी गुणवत्तापूर्ण परिवहन मार्गों का अभाव और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी ऐसी समस्याएं हैं जिसके समाधान की आवश्यकता है. اس کے اترق انتراشی پرچار پرسار کو بڑھانے اور پریتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے ڈیجیٹل تکنیکوں کے ویاپک اپیوگ کی بھی آوشیکتا ہے۔ بھوشیہ میں تجکستان کھیتر کے پرمکھ پریاتن کیندروں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ اس کے پریاتن اوسنرچنا کو اور وکاست کرنا، سیواؤں کی گنوتا میں سدھار کرنا تتھا دیش کے پریاتن سمبھاوناؤں کا وشو استر پر ویاپک پرچار کرنا آوشیک ہے۔ پرکرتی اور سنسکرتی سنسادنوں کا پربھاوی اپیوگ، پریاورن سنرکشن تتھا گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا اس کھیتر کے تیور وکاس میں سہایک ہو سکتی ہے۔ تجکستان گنرجا پریاتن وکاس کی وشال سمبھاوناؤں والا دیش ہے۔ اس کے سندر پرکرتی، پراچین اتہاس، سمردھ سنسکرتی اور تاجک لوگوں کا آتیتھیہ پریتکوں کو آکرشت کرنے کے لیے انوکول واتاورن پردان کرتے ہیں۔ اس کھیتر کا آگے کا وکاس راشٹری آرت ویوستھا کی پرگتی، جنتا کے جیون استر میں سدھار تتھا انتراشٹری منچ پر تجکستان کی پرتشٹھا بڑھانے میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے۔ ہلکے ورشوں میں تجکستان گنرجا کا دورہ کرنے والے ودیشی پریتکوں کی سنکھیا لگاتار بڑھ رہی ہے۔ تجکستان سرکار کے پریاتن وکاس سمیتی کے انوسار ورش 2025 میں دیش میں 21,04,000 سے ادھک ودیشی ناگرک پرویش کر چکی ہے۔ ان میں سے 17,84,000 لوگوں کو پریاتک کے روپ میں پنجیکرت کیا گیا ہے۔ یہ آنکڑا پچھلے ورشوں کی تلنا میں الیکھنی روپ سے ادھک ہے اور تجکستان کے پرتی ودیشی پریتکوں کی بڑھتی روچی میں درشتا ہے۔ ورش 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں ہی 7,67,000 سے ادھک پریاتک تجکستان آئے، جو ورش 2024 کے اسی اودھی کے تلنا میں 31% سے ادھک वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2026 में भी इस क्षेत्र का विकास जारी है। तजकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति के अधीन सांख्यिकी एजेंसी के अनुसार केवल वर्ष 2026 के पहले तिमाही में 4,39,400 विदेशी नागरिक देश में आए, जिनमें से 3,71,000 से अधिक पर्यटक थे। یہ سنکھیا ورش 2025 کے اسی اودھی کی تلنا میں لگ بھگ 31% ادھک ہے۔ پریتکوں کی سنکھیا میں یہ وردھی پریاتن وکاس سے سمبندھت سرکاری نیتیوں، بنیادی ڈھانچے میں سدھار، یاترا پرکریاؤں کے سرلی کرن تتھا انتراشٹری استر پر تجکستان کی پریاتن سمبھاوناؤں کے پربھاوی پرچار کا پرینام ہے۔ آج تجکستان اپنی ادویتی پرکرتی سندرتا، اونچے پروتوں، سمری ایتہاسک ایوان سانسکرتک وراثت تتھا اپنے لوگوں کی مہمان نوازی کے کارن ہزاروں ودیشی پریتکوں کے لیے ایک آکرشک پریاتن استھل بن چکا ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تپانی تجکستان کے پریاتن وکاس کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔